0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: अवां जी स्किन डल आंधी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: जेकरे तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, भुख न लगण या बदहज़मी जड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरत عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
2: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقا سعید ہر جمعے کے ڈی مریضن جو مفت علاج کندی
9: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-3141-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
9: जी हा, 2-3135-5786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: छा तव्हां जोड़न जे सूर पुठन जी तकलीफ़ कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0326638789 & 0312-34-01-287 खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
6: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

मकामी सीड़पकार मुल्क में सीड़पकारी कंदा त परडेही सीड़प भी वधंदी। हुकूमत मुआशी तरक्की सां गॾु बरामदात में वाद के तरजीह ॾेई रही आहे। कराची में तकरीब के खिताब कंदे नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त सीड़पकारी ऐं मुआशी तरक्की लाइ हुकूमत ऐं निजी शोबे खे गॾिजी कम करणो पवंदो। खैरपुर रियासत जे गोणे वाली अली मुराद खान टालपुर जो मड़कोट जी जे किले पहुचायो वियो। जनाज़े नमाज़ जूं तयारियूं मुकमिल, वॾे अंग में शहरी जनाज़े गाह पहुतल। लाड़काणे शहर जे बाज़ीगर पुल वटि राइस कैनाल में गुज़िरियल ॾींहुं ॿुडी वियल लिंगर जो लाश अञा हथ न आयो। मुमताज़ कॉलोनी वासी मेहदी हसन खटियाण जी ॻोल्हा जारी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सबनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज, बार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वने थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
12: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
12: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
12: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
12: जी हा, 2315525786।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
12: सिंध जो आवाज़।

0: चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर शेयरिंग टू जी वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिलसूज सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज। मुझे कहते हैं आज रुखसार सेंस की आवाज हवैया, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टप सर्कुल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, जो कि आप सुनते हैं डेली बेसिस पे, यानी कि मंडे टू मंडे से लेके हर एक दिन पूछिए जी। सो आप मुझे सुन सकते हैं। और इसके अलावा जी प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करेंगे, तो जी वक्त हुआ जाता है 11:17, जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। तमाम तो लोग घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शे में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पर भी आप जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बेटर लक दिन। और अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बगल से खुदा खैर दीजिए मौजूद और तब के लिए खुदा खैर दीजिए मतलब
1: के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबस।
0: वो तमाम तो लोग जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने हाथ रजन से दे हैवी बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे कैचुअल सॉन्ग। वो लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों में शहरों शहरों शहरों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मर गुजारों घर और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा अहलन वसहलन मरहबा बखैर आदमे जी आया नू सद बिस्मिल्लाह बाजार शाम निहा एंड वेलकम टू जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट। सुपर वाइट जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा सुपर से भी ऊपर हैं, और सुपर वाइट वाले ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और मौजू हैं। सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बहुत बुरा करते हैं, अच्छा करेंगे और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। और सुपर वाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं डे बाय डे, वो साथ साथ आपको बताऊंगी। और साथ साथ आप लोग सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर भी नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले वो तमाम तो लोग जो कि सखर और लालकाना से ताल्लुक रखते हैं वो इमरान साहब से राबता कर सकते हैं। इमरान साहब का नंबर है 03147754462। इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए नंबर है जी 03702568321। ठीक है, ये नंबर है, डायल कीजिए और जहां जहां पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएं। हम मूव करें प्रोग्राम में एक अदद गाने की तरफ और गाना सुनाएंगे, गाने के साथ हम वापस आएंगे और आगे चलेंगे, आपको बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स।

जी के प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. इसलिए ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पर. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/GFM88NGLRKANA FM88.8, जिसके पेज पे आके आप लोगों को मिलती है लाइव ऑडियंस में जिंदगी गुजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी बातें कर सकते हैं. और सुपर वाइक के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अमेजिंग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉशेस की बहुत अच्छी रेंज आती है, ब्यूटी क्रीम्स की बहुत अच्छी रेंज आती है, और आपकी खूबसूरती जिसको लगाती है 4 से बहुत ज्यादा चांद. ठीक है जी, तो सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, इनमें इनकी वाइटामिन सी क्रीम आती है. वाइटामिन सी क्रीम के साथ साथ स्ट्रॉबेरी क्रीम आती है, टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रेकल क्रीम आती है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एंटी एक्नी क्रीम आती है. इसके अलावा सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम आती है. ठीक है, तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम और साथ में इनके बूस्टर्स तो बहुत ही कमाल के हैं. और बूस्टर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप इनसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे. लेकिन हम चलेंगे आगे, एक और गाना प्ले करेंगे. गाने के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. वापस आएंगे, वापस आके प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइड अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: It's 11:30 a.m. This time check.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 Network सिंध की आवाज.
2: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम ईहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गड़ोग सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 ढीं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे 4 बजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ए लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सको था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियों। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओं खड़ी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जी।
1: ओके, ये गाना किसका है?
0: ये गाना है मुनव्वर मुमताज मौलाई का, हमारे दोस्त है, उनको शामिल करना चाहता हूँ।
1: कीजिए।
0: शमी ढिल्लू साहब, सावर ढिल्लू साहब और सरदार साहिबा जो हमारा प्रोग्राम सुनती है लेकिन हमको सलाम नहीं देती, उनको भी सलाम देना चाहता हूँ, और मुस्कान साहिबा और जो भी सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।

अगले साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि एक गाना प्ले कर लेते हैं और गाने के साथ फिर कॉल्स को लेते हैं, आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस और साथ में कमेंट्स भी. ठीक है, तो गाना हम प्ले करने जा रहे हैं और ये वाला गाना बल्कि ये वाला नहीं, मैंने कुछ और प्ले करना था और जब मैं कुछ और सर्च करती हूँ तो मुझे कुछ और मिल जाता है. खैर कोई बात नहीं, हम प्ले करेंगे एक और खूबसूरत सॉन्ग. सो इसको हम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं सुपर वाई के प्रोडक्ट्स के साथ. और सुपर वाई के प्रोडक्ट जिन लोगों ने ले लिए हैं तो वो डेफिनेटली अपनी ब्यूटी को जो है एंजॉय कर रहे होंगे. और अगर अभी तक आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो बहुत देर कर रहे हैं, देर नहीं करनी और आज ही मार्केट जाके लेके आना है सुपर वाई के प्रोडक्ट्स को. गाना सुनेंगे साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले गाना.

song is beautiful song aur song ke saath saath aapko batate jate hain ji super white walo ka helpline number jo ki aap logon ne dial karna hai sakhar aur ladkana wale no down kar liye ji sakhar aur ladkana wale dial kar sakte hain 03147754462 ठीक है दोबारा से रिपीट करूंगी 03147754462 इसको डायल कर सकते हैं जहां जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां वहां पे अवेलेबल करवाएंगे सखर और लाड़काना में ठीक है इसके अलावा हैदराबाद वालों के लिए जो नंबर है वो है जी मुमताज हसन खान साहब का जो कि डायल कर सकते हैं आप लोग 03702568321 ठीक है इसको डायल कर सकते हैं इसके साथ साथ जी इनकी दूसरी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जी जिसमें पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है जहां हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होती है वहां पे हमारे नेल्स भी ड्राई हो रहे होते हैं हमारी जो है हील्स जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और फटने लगती है तो फटी हुई एड़ियों के लिए और खास तौर पर ड्राई लिप्स के लिए ड्राई नेल्स के लिए पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है और जब पेट्रोलियम जेली ही सुपर वाइट की हो तो बहुत कमाल की चीज हो जाती है और वो कमाल की चीज एक तो ये होती है कि बहुत अच्छी पैकेजिंग में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ और मजे की बात कि इसके अंदर फ्लेवर्स बहुत सारे आते हैं ठीक है आप अपना फेवरेट फ्लेवर यूज कर सकते हैं जी लेमन का फ्लेवर आता है पिंक फ्लेवर आता है कोकाओ बटर फ्लेवर आता है इसमें ठीक है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स इसमें आपको मिल जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग जिसको देख के आपका दिल खुश हो ही जाता है और इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए इस सर्दियों के सीजन में और जब इन सर्दियों के सीजन में आपको ये जो है अच्छे अच्छे अलग अलग वेरिएंट्स इस्तेमाल करने को मिलेंगे पेट्रोलियम जेली के अंदर तो और भी ज्यादा कमाल हो जाएगा अच्छा पेट्रोलियम जेली से आप डिफरेंट चीजें भी बना सकते हैं और वो जो डिफरेंट चीजें हैं जो आप बना सकते हैं वो लाइक आप इससे जो है अपनी लिप बाम बना सकते हैं जी कोई भी आप उसमें लिपस्टिक का शेड ऐड करें और फिर उसमें आप जो है लिप बाम मतलब के पेट्रोलियम जेली ऐड कर दें और उसकी जो है क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखनी है पेट्रोलियम जेली की और जो आप की जो लिपस्टिक है उसकी थोड़ी सी कम रखनी है और आपका पिंकिश या रेडिश जो लिप बाम है वो तैयार हो जाएगा आप उसको स्टोर करके डेली बेसिस पे एज अ टेंट एज अ लिप बाम यूज कर सकते हैं ठीक है एक तो ये हो गया और दूसरा आप इससे हैंड एंड फीट क्रीम भी जो है बना के यूज कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे तो सुपर वाइट की कोई भी एक ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है ठीक है सुपर वाइट की कोई भी एक ब्यूटी क्रीम लेके सेम उसकी क्वांटिटी के बराबर यानी कि उसकी हम वजन पेट्रोलियम जेली लेंगे सुपर वाइट वालों की कोई भी अपना फेवरेट फ्लेवर ठीक है उसको लेने के बाद दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद तैयार है आपके हैंड एंड फीट की क्रीम जो कि आप रात को सोने से पहले अपने हाथ और पांव पे अप्लाई करके सो सकते हैं और कुछ ही दिन में अपने हाथ पांव को चिट्टा गोरा कर सकते हैं ठीक है तो ये इसके रिजल्ट होंगे जिन लोगों के हाथ और पांव के डार्क नकल्स हो जाते हैं या टैनिंग आ जाती है ये सब कुछ खत्म होगा और आपकी जो हैंड्स एंड फीट हैं वो आपके फेस की तरह जो है चमक रहे होंगे तो ये इसकी खास बात है इसके अलावा जी सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो इस फॉर्मूले के अंदर आप ब्यूटी सीरम बूस्टर भी ऐड कर सकते हैं सुपर वाइट वालों का सटैट आपको जो रिजल्ट है वो डबल से ट्रिपल मिलेंगे और ट्रिपल से भी कई ज्यादा मिल सकते हैं ठीक है तो ये फायदा है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स का जो कि आप लोगों ने पूरा पूरा उठा लेना है और मार्केट जाएं आज ही बाय करें जहां पे अवेलेबल नहीं है हेल्पलाइन नंबर उन लोगों के लिए मैं बता चुकी हूं सो हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग डायल करके अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में इन प्रोडक्ट्स को इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं तो जी इसी के साथ हम चलेंगे आगे और क्या करेंगे हम

बाद न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइड अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरक्यो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंद मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
3: मातली आस पास की आवाम खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2101-43-842
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: एक मौका पर बदकिस्मती से ये धर्मों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं वो दोबारा नमोदार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूर नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूंगा कि आप अपनी होश के नाकों को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी, ये पूरी कौम इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप होश के नाकों लें, इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरनों को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पीटीआई के धरणनि जी सियासत छॾण जो मशवरो ॾेई छॾियो। लॉन्ग मार्च ख़त्म करण जी सूरत में ॿीहर ॻाल्हियूं करण जी दावत बि ॾेई छॾी। इस्लामाबाद में तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त धरणे ऐं लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहिरियों निशानो मैशियत हूंदी आहे। हुकूमत नेक नियतीअ सां पीटीआई सां ॻाल्हियूं कयूं, छा मुआशी फेतीअ खे ॿीहर रोकण मुल्क दुश्मनी नाहे। पीटीआई वारा होश खां कम वठनि, लॉन्ग मार्च ख़त्म कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं।
3: रियासत बिल्कुल माँ होती है लेकिन रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है। बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हों, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे। और इस रोल को पहले भी किया है, कायम होती है। जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक कांप रही होती थी, सारा निजाम रुका होता था। कहां है आज रियासत का फैसला है और उस फैसले के बाद है कोई, ये रियासत का फैसला है। वो टीएलपी हो, वो पीटीआई हो, वो कोई और जमात हो, नो नॉनसेंस।
2: रियासत बिल्कुल माउ आहे, कॾहिं कॾहिं रियासत खे पीउ जो किरदार बि अदा करणो पवंदो आहे। मुल्क जी वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त ॿुधायो किथे आहे टीएलपी जेका हलंदी हुई त

इल्ज़ाम रुकजी वेंदो हो। हाणे किथे आहे रियासत जो फ़ैसिलो त TLP हुजे या का बि जमायत कंहिंखे बि बेवकूफ़ी करण न ॾिनी वेंदी। KPK बाबति आइनी मामलनि ते मुशावरत थी रही आहे। पहिरीं तरजीह ॻाल्हियूं ऐं सियासी हल आहे। लॉन्ग मार्च लाइ सियासी इंतज़ामी समेत हर क़िस्म जो इंतज़ाम कयो आहे। ॻाल्हियुनि जी नाकामियुनि जो ज़िमेवार PTI न पर वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि। PTI अॻवान शौकत यूसुफ़ज़ई चयो आहे त 99% कामयाबी जी दावा कंदड़ ॻाल्हियुनि तां छो पोइ ते हटिया। 1% मसइले जे हल लाइ वधीक वक़्त जो मसलो न हो। मैशियतूं एहतजाज सां तबाह न आहिनि थींदियूं, ग़लति पॉलिसियुनि सां तबाह थींदियूं आहिनि। पंजाब हुकूमत सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो। समूरे पंजाब में 10 ॾींहनि लाइ जलसन जुलूसनि ते पाबंदी हूंदी। KPK जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त PTI जो लॉन्ग मार्च अटक वारी पुल पार करे न सघंदो। सदन ऐं वज़ीर आज़म फैसलो कयो त KPK में गवर्नर राज लागू थी वेंदो। यमन में सऊदी इतिहादी फ़ौज ऐं हूसी बाग़ियुनि में चकरियूं जारी। हुसैन पारां सऊदी अरब में तेल कंपनी आर्मको खे निशानो बणाइण जी दावा। यमनी सरकारी फोर्सिस मूजिब हुसैन इमदादी सामान खणी वेंदड़ ट्रक ते हमिलो कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में 1 ॼणो शहीद थियो आहे। हुसैन सऊदी अरब में 3 हंधनि ते हमलनि जी दावा कई आहे। ईरान सां ॾेती लेती बंदि कयो। ॿी सूरत में पाबंदियुनि लाइ तयार रहो। अमेरिका निजी बैंकनि खे ख़बरदार करे छॾियो। अमेरिकी नाणे वारे वज़ारत मूजिबि ईरान सां ॾेती लेती कंदड़ निजी बैंक्स खे बिना कंहिं एतिराज़ जे अमेरिकी पाबंदियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। निजी बैंक्स ईरान सां हर क़िस्म जी ॾेती लेती फौरी तौर बंदि कनि। गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात। अफ़गानिस्तान समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाननि जो मसइले जे हल लाइ सिफ़ारत ते कारी ते ज़ोर ॾिनो वियो। जनरल सेक्रेटरी चयो आहे त धुरिन खे मसइले जे हल लाइ सिफ़ारतकारी तरफ़ अचण घुर्जे। पाकिस्तान जी कोशिशनि सबबु अमेरिका ऐं ईरान में जंग बंदी थी, जेका सारा जोॻो आहे। इसहाक़ डार चयो त अफ़गानिस्तान जे सरज़मीन तां पाकिस्तान ते हमला थी रहिया आहिनि। आर्मी बिरादरी नोटिस वठे। वज़ीर आज़म पारां सियारे में गैस लोड मैनेजमेंट लाइ गॾियल हिकमत अमली तयार करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी इदारत हेठि सियारे में गैस जी लोड मैनेजमेंट बाबति अहम इजलास थियो। मौजूदा इलाइक़ाई सूरतहाल में गैस जी बिना रंडक दरामद लाइ ज़रूरी क़दम खणण जी हिदायत कई। घरेलू सतह ते मक़ामी गैस जी जाइ ते मुतबादिल तवानाई ज़रियनि खे हथी ॾियण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जी गैस लोड मैनेजमेंट बाबति आगाही मुहिम हलाइण जी हिदायत। CEO के इलेक्ट्रिक जे इजलास में शिरकत न कई। सिंध असेंबली कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। के इलेक्ट्रिक जे नुमाइंदनि पारां घुर्बल जवाब न ॾियण ते कमेटी इज़हार तलब करे वरिती। के इलेक्ट्रिक जे नुमाइंदनि खे 3 ॾींहनि अंदरि लिखित में जवाब जमा कराइण जो हुकुम। सिंध असेंबली जे ख़ुसूसी कमेटी पारां के इलेक्ट्रिक खे लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। के इलेक्ट्रिक जे नुमाइंदनि जो तर्ज़ अमल कमेटी जे भञकड़ी करार।

ऐं केपी के जे इलाइक़े डेरा इस्माइल खान में एफबीआर 4 एलकार समेत 5 ॼणा शहीद थी विया। खान पुलिस मूजिब भाया पुल वेझो हथियारबंदनि जी गाॾीअ ते फायरिंग, 4 एफबीआर एलकार शहीद थिया। वन रोड ते ट्रैफिक संभालींदड़ एलकार खे बि शहीद कयो वियो। पुलिस इलाइक़े में सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतों ने बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 03-310-31-25-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
8: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
9: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842। امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
8: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
8: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو الٹرا تھرمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
10: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
5: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
11: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
12: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
13: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
8: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
14: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
14: हाँ।

0: ॻोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-2

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जी पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे दी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5 p.m. This transcheck is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes.
4: धरनों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं तो दोबारा नमूदार हो रहे हैं.
5: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो उसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूर नहीं होने देंगे. कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा इंशाल्लाह. हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे. मैं अपनी उनको कहूंगा कि आप अपनी रोज के नाकों को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी. ये पूरी कौम इस बात से आगाह है. मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप रोज के नाकों लें. इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरनों को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे.
6: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीटीआई के धरणन की सियासत छड़न जो मशवरो डेई छो. लॉन्ग मार्च खत्म करने की सूरत में बीहर गाल की दावत भी डेई छी. इस्लामाबाद में तकरीब में खिताब कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ धरणे लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहरियों निशानो मईशत हूंदी है. हुकूमत नेकनीयती से पीटीआई से गाल माशी फीथे के बीहर रोकण ला मुल्क दुश्मनी ना है. पीटीआई वारा होश का कम वठन, लॉन्ग मार्च खत्म कर बीहर गाल असाजो को भी मुतालबो गैर आइनी न हो. गाल नाकामी जो मलबो एक बे मथा न विझण घुर्जे. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गुहर है त गालियन वारी हुकूमती आछ नुमाइशी है. शौकत यूसुफ सही है त गालियन की नाकामी जहा जिम्मेवार वफाकी वजीर मईशतू एहतजाज सा न पर गलत पॉलिसियन सबब तबाह थन्दन.
7: रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है. बिगड़े तिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हों, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे. और इस रोल को पहले भी किया है. कहाँ होती है जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक काम रही होती थी, सारा निजाम रुका होता था. कहां है आज रियासत का फैसला है और उस फैसले के बाद है कोई. ये रियासत का फैसला है, वो टीएलपी हो, वो पीटीआई हो, वो कोई और जमात हो. नो नॉनसेंस.
6: रियासत बिल्कुल माँ है. कदें कदें रियासत के पीओ जो किरदार भी अदा करो पवन्द है. मुमलकती वजीर तलाल चौधरी चाहिए बुधा किथे है टीएलपी जेका हलंदी हुई त समूरो निजाम रुकजी वेंदो हो. हाणे किथे आहे रियासत जो फैसलो आहे त टीएलपी हुजे या का बी जमात, कंहिंखे बि बेवकूफ़ी करण न डि॒नी वेंदी. केपी बाबति आइनी मामलनि ते मुशावरत थी रही आहे. पंजाब हुकूमत बि सूबे में कलम 144 लागू करे छडि॒यो. 10 ॾींहनि लाइ जलसनि जुलूसनि ऐं इज्तमाउनि ते पाबंदी हूंदी.
8: इमरजेंसी के बगैर लगाए बगैर

0: ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-33-842।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-95-244।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 3135-25-7786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

ऐं सिंधड़ीअ जी शाम में यूनिस बकारीअ जा सलाम। जी मज़े सामाई यकीन अॼु अवां सां अवां जूं ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं ऐं अवां मैसेज करे सघो था। जेकर शामिल थियण चाहियो था त टाइप करियो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो। 888-881 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। असां आबदा परवीन जी हिन सॉन्ग खां पोइ तव्हां सां मिलूं था थोरी देर में। वञे मैसेज शामिल करण लाइ इजो मां वापसि थो अचां।

जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क अवने पने शो तमा बुधो प्या सिंधड़िए जी शाम है सिंधड़ी जी शाम में सिक भर सलाम अवन जी मोहब्बतू प्यार ए पंजाय वे रंग खणी अवन जी खिदमत में हाजिर यूनिस बकारी मोहब्बतुन जी महफिल जारी हो सारी जी मज सामाइन जेकर अवां शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज मोकिलियो लिखो एम टी आई स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 असांजो नंबर आहे उन ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो असीं ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो ॻोठ मोहम्मद यूसुफ खासकेली खां रशीद अली खासकेली ॿुधे पियो मिठा माण्हू तमामु घणी महिरबानी भलीकार तव्हां लिखियो सलाम वालेकुम असलाम तमामु घणी महिरबानी कि रोडे कुर्ब अव्हां जा ख़ुश हुजो ऐं आबाद हुजो मोहबतूं ख़ालिद नोतकाणी असांखे जॉइन कयो आहे मातली शहर खां लिखियो आहे त ज़बरदस्त सॉन्ग अच्छा तमामु घणी मोहबतूं साईं जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ ऐं साथ में अव्हां जूं ॻाल्हियूं अव्हां सां झलूरी खां ख़ालिक लाशारी शो वी आई पी आई लिखे थो तमामु घणी मोहबतूं ऐं तालके साले पट खबड़ी भिट खां इरफान अली थेबो साहब ॿुधे पियो इरफान भलीकार ॻोठ पुनू खान पंवर खां असांखे रोस्तम अली पंवर साहब ज्वाइन कयो अव्हां जूं तमामु घणियूं मोहबतूं साईं जाम लगारी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे अली रज़ा लगारी आकिब लगारी ऐं अज़हर लगारी अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानी ॻोठ हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली लग झंडो मरी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे क़ुर्बान अली ख़ासकेली तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं क़ुर्बान आलम ख़ान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार ॿुधे पियो ऐं महिरबानी ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी महबूब नाज़ जलालाणी मुख़्तियार नाज़ जलालाणी आरज़ू असलम जलालाणी लिखियो आहे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम मोहबतूं मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब अव्हां जा

सुल्तान चांडियो साहब असा ज्वाइन कर चुको है। सुल्तान मोहब्बतूं तमाम घड़ी मेहरबानी आई गोठा हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड बुधे पे भली कार है GFM 88 रेडियो नेटवर्क। जी जनाब सांस है आवाज है साथ हमें जबरदस्त ट्रैक पाबो वीरो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेघवाड़ नोवल राय दानिश कुमार सूरज गुल शंकर लाल चवंदा शो लाजवाब अच्छा मेहरबानी मोहब्बतू साईं

सनम मारवी जी सदा हवाओं में गूंजे पई अमाबदो पे GFM 88 रेडियो नेटवर्क के ही ट्रैक बुधंदा हलदासी ए उन का पे कमर्शियल ब्रेक हुंदो उन कमर्शियल ब्रेक का पो वापस इंदासी सोब बिना ब्रेक सो जना प्रोग्राम है जारी ओ सारी नन्डे ब्रेक का पो वापस इंदो अवां जो पेंजो यूनुस बकारी के रहने वंच

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
3: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-41-43-842। امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہیے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
6: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
8: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
9: yeah!

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की आवाज आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

जी जनाब साज़ आवाज़ी साथ में वञे मैसेजेस मोहबतूं तमामु घणी महिरबानी उहा सभिनी जूं लख थो राय जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं ॿुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के कुझु मैसेजिस आहिनि जेके तव्हांखे शामिल कंदा हलंदासीं ऐं यकीन मैसेज असांखे मेहराबपुर खां जेको पहुतो उन ते असां ट्रैक तव्हांजे लाइ प्ले करे छॾियो हुयो ऐं मेहराबपुर जे वेझो जेको ॻोठु आहे उहो आहे जी जनाब लाखा रोड ऐं उतां खां असांखे ज्वाइन कयो हुयो जी जनाब अब्दुल जब्बार भट्टी साहब अब्दुल जब्बार भट्टी साहब तमामु घणी मोहबतूं तव्हांजूं तव्हां असांखे ज्वाइन कयो अवां असां साण शामिल रहिया तमामु घणी मोहबतूं तव्हांजूं ऐं तव्हांजा लख थोरा ऐं जी जनाब सुगार सोबारो भट्टी असांखे जी ॿुधे पियो तमामु घणी मोहबतूं तव्हां लिखियो सलाम वालेकुम असलाम कहिड़े कृप अवांजा साईं ख़ुशि जो आबाद जो तारनि में चंड खीर में खंड ऐं मेवनि में अंबू जो मोहबतूं अवांजूं ऐं जनाब शाम का सलाम कबूल हो इहो मैसेज मोकिलियो आहे जी जनाब अच्छा त शाम जो पौणा पंज पौणा छह बजे लाइट हली वेंदी उनखे अॻु में मैसेज शामिल कयो मैसेज पहुतो ई हाणे आहे मां अठ तरमोरी खां इहो मैसेज पहुतो राजा एच जी जनाब भाईजान तमामु घणी महिरबानियूं लाइट हली वेंदी उनखां अॻु में राजा एच सी किशोर कुमार अवांजी तमामु घणी महिरबानी हीरा लाल तव्हां सां गॾिजी ॿुधे पियो तव्हां वटि लाइट अलाए

वही आहे न बहरहाल जेकॾहिं वई हूंदी त अफ़सोस ज़रूरु थियो हूंदो छो त तव्हां पंहिंजो मैसेज न ॿुधी सघिया हूंदव। बहरहाल अव्हांजी तमामु घणियूं महिरबानियूं, अव्हांजा लख थोरा। ऐं जनाब असांखे रवि कुमार जॉइन कयो आहे मातली खां, रवि कुमार ऐं थैंक यू जी जो अव्हां सां गॾु विक्रम शामिल आहे, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा थैंक यू ऐं भली कार चवंदासीं तव्हांखे। जल्दी जल्दी सां टाइप करे वठो, लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी, पंहिंजो नालो लिखो 888-881 सौ नंबर। जी हा 88-81 झुकायो मूं सिरो, शुरूअ में MTI लिखणो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हांखे असांखे मैसेज मोकिलणो आहे। ओके जनाब, ॾिसी था वठूं हाजी गुलाम खासकेली झंडो मरी खां, कुर्बान अली खासकेली साहब अवांजी तमामु घणी महिरबानी, वॾा वॾा वांजा तव्हां लिखियो आहे त असांखे गानो ॿुधायो। ओके कोशिश कंदासीं, तव्हां लिखियो फौजिया सुमरो जी बिल्कुल प्ले कंदासीं। ऐं तालके सिंधड़ी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे जी जनाब, ज़िले मीरपुर ख़ास खां असांखे मैसेज पहुतो आहे, ॻोठ आहे आलम खान जरवार, उतां खां रियाज़ हुसैन जरवार, वफ़ा इमामुद्दीन जरवार ॿुधनि पिया, तमामु घणी मोहबत ऐं भली कार। जी जनाब, त पोइ अच्छा अव्हां ॿुधो पिया असांजो आवाज़, मैसेज सेंड करे सघो था, लिखो MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, पंहिंजो नालो 888-881 असांजो नंबर आहे, हुन ते मैसेज असांखे ज़रूरु मोकिलिजो, ॾिसंदासीं त असां सां गॾु हाणे केरु शामिल थींदो। रोहिड़ी सखर खां असांखे नज़ीर अहमद मंगेरियो साहिब ॿुधे पियो, चवे थो त उर्स चांडियो जो कलाम ॿुधाइजो, ऐं टोड़े नेठि टोड़े वियो यारी। अच्छा ठीकु आहे, मां कोशिशि कयां थो, बिल्कुलु हाज़िर नज़ीर साईं, तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हांजूं, कोशिशि कंदासीं जेकॾहिं मिली वियो त इहो ट्रैक तकिड़ो तकिड़ो त बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, मोहबतूं जो अव्हां असां सां शामिल थी चुका आहियो भली कार।

जे कबावत खां शौकत अली जखराणी साहब जो आइन कयो रहमत अली जखराणी सां गॾु तव्हां लिखियो त प्रोग्राम पसंदि आहे मोहबतूं अवां जो आहिनि साईं मिठा माण्हू महिरबानी कुंडरी खां चोहन कुमार कोहली डॉक्टर अनीता चौहान ऐं संगीता पारस खे मैसेज पहुतो अवां जूं तमामु घणी महिरबानी भलीकार जी मज़े सामाइन यकीन असां छह वगे खां पोइ तव्हांजो लाइव कॉल्स वठंदासीं तेसीं ताईं तव्हां मैसेज मोकिलियो लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं सेंड कयो 88 81 888 ते टंडे ग़ुलाम हैदर जे ॻोठ जी जनाब रहीम अली चांग जे ॻोठ मां असांखे ज्वाइन कयो आहे चेतन परमार अवांजी तमामु घणी महिरबानी चेतन परमार अवां सां गॾु अवां जो सन ॿुधे थो महिरबानी जी जनाब उन जो नालो आहे अवां जे पुटड़े जो करन परमार ओके वेलकम चवंदासीं तव्हांखे ऐं बेबी हिना परमार ॿुधे पई अवां जो बि तमामु घणी महिरबानी तव्हां लिखियो सर यूनिस क्या हाल आहे मां बिल्कुलु ठीकु आहियां तव्हां ख़ुशि आहियो चङा भला मतारा जोड़ ऐं उमीद आहे त तव्हां ख़ुशबाश हूंदव ऐं शाश विशाश जी मुझे सामने असो आवाज तां ताई पहुंचो होंद हाँ बिल्कुल पहुंचो होंद तुम बुध पे GFM 88 रेडियो नेटवर्क के GFM मीरप्रकाश GFM लाड़कानू GFM सखर GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंड GFM मटियारी GFM मातली के एक ही वक्त तरह

जी मदर सामिन जेकर असा पा सभी गजी कंदासी अज कुर्ब की कचहरी ए हाल अहवाल कंदासी तो तवां असा बुधाई सको था किथा किथा कड़े शहर वायण वस्ती बस्ती में बुधो पे सो बस अवे एक मैसेज जो ओसियड़ो हों इंतजार हों जेके मानू इंटरनेट के थ्रू असा पूरी दुनिया में कनाइन पाया उन्हें मेहरबानी जीएफएम एच8 रेडियो नेटवर्क की ऑफिशियल लिंक ते ज्वाइन किया वेलकम

जीअं वज़ीर समीन तव्हांजे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक असांजे क्यू शीट में शामिल आहे ऐं उहो यकीन ॿुधाईंदासीं, पर हिकु दफ़ो ॿुधायूं त पंज मिंट बाक़ी आहिनि वञे मैसेज शामिल करण जा। ठीकु, छह वॻे असां न्यूज़ ॿुधंदासीं ऐं छह वॻे जी न्यूज़ खां पोइ जेको कमर्शियल ब्रेक हूंदो उन खां पोइ तमामु नेटवर्क ते तव्हां सभिनी मौज़ूस ॿुधंदड़नि साण हूंदासीं लाइव कॉल्स ते। फिलहाल ट्रैक ऐं ब्रेक। जी हा, त पोइ साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में प्रोग्राम आहे जारी उसारी। नंढड़े ब्रेक खां पोइ अव्हां सां गॾु हूंदो अव्हांजो पंहिंजो यूनुस बकारी।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो इसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे. कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा इंशाल्लाह. हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे. मैं भी उनको कहूंगा कि आप अपनी रोज के नाखून दूं. क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी? ये पूरी कौम इस बात से आगाह है. मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप रोज के नाखून लें. इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरनों को आप इसको खत्म करें, और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे.
7: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीटीआई के धरणन की सियासत छॾण जो मशवरो ॾेई छॾियो. लॉन्ग मार्च खत्म करण की सूरत में ॿीहर ॻाल्हियूं करण की दावत भी ॾेई छॾी. इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त धरणे ऐं लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहिरियों निशानो मैशत हूंदी आहे. हुकूमत नेक नियती सां पीटीआई सां ॻाल्हियूं कयूं. छा मुआशी फीते खे ॿीहर रोकण मुख दुश्मनी न आहे? पीटीआई वारा होश खां कम वठनि, लॉन्ग मार्च ख़त्म कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं. अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई अपोजिशन टीम के हुकूमत से गालन लाए हिदायतूं ॾेई छॾियूं. हुकूमती आछ जो मुस्बत जवाब ॾियण जी हिदायत. बानी से मुलाकात पहिरियों शर्त करार. बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असांजो को भी मुतालबो गैर आइनी न हो. गालन जो नाकामी जो मलबो हिक ॿिए मथां न विझण घुर्जे. गालन वारी हुकूमती आछ नुमाइशी आहे. असद कैसर चयो त संगीन ख़दशनि बावजूद हुकूमत सां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं. पाकिस्तान ख़ातिर सियासी जमायतनि खे ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं.
8: रियासत बिल्कुल माँ होती है, लेकिन रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है. बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हों, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे. और इस रोल को पहले भी किया है, कायम होती है. जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक काम रही होती थी, सारा निजाम रुका होता था. काम है आज रियासत का फैसला है, और उस फैसले के बाद है कोई, ये रियासत का फैसला है. वो TLP हो, वो PTI हो, वो कोई और जमात हो, नो नॉनसेंस.
7: रियासत बिल्कुल माउ आहे. कॾहिं कॾहिं रियासत खे पीउ जो किरदार बि अदा करणो पवंदो आहे. मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त ॿुधायो किथे आहे TLP जेका हलंदी हुई त समूरो निज़ाम रुकजी वेंदो हो. हाणे किथे आहे? रियासत जो फ़ैसिलो आहे त TLP हुजे या का ॿी जमात, कंहिंखे बि बेवकूफ़ी करण न ॾिनी वेंदी. KP बाबति आइनी मामलनि ते मुशावरत थी रही आहे. पंजाब हुकूमत बि सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो. 10 ॾींहनि लाइ जलसनि जलूसनि ऐं इज्तिमाउनि ते पाबंदी हूंदी.
9: लेकिन अगर टेररिज्म जो दहशतगर्दी जिस तरीके से इस मुल्क में है, उसको कंट्रोल करने के लिए आईनी जो भी तरीके का हुआ उसको फिर अख्तियार करना पड़ेगा.
7: दहशतगर्दी के कंट्रोल करण लाइ को हल आहे त थियण घुर्जे. इमरजेंसी लगाइण बिना मसला हल थी सघनि था त थियण घुर्जनि. बान सैदाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत अपोज़िशन विच में ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ वॾी कोशिश कई.

0: असां सभु अवाम वालो जवाबदार आहियूं। अवाम खे ॾिसणु घुर्जे त संदन चूंडियल नुमाइंदा संदन लाइ कम करे रहिया आहिनि या नाकारी सियासत करे रहिया आहिनि। वफ़ाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो आहे तमाम ॾिसे त हिकु तरफ़ चूंडियल नुमाइंदो आहे जेको हिकु महीनो ऑफिस नथो वञे न ई को इजलास करे रहियो आहे। ॿिए तरफ़ अहिड़ो शख़्स आहे जेको ॾींहं राति कम करे रहियो आहे। अवाम खे दरख़्वास्त कंदुसि त ज़रूर ॾिसनि संदन चूंडियल नुमाइंदा किथे वक़्तु विञाए रहिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतों ने बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुन जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे 4 बजे दिन फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुन जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
5: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
11: खुशखबरी।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
11: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
12: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
13: आवाज की डोर से बंधा हुआ
11: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ॾिसंदासीं कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब, ऐं किथां खां? जी नज़ीर अहमद बंगरे साहब, आवाज़ अचे पियो?
1: बिल्कुलु आवाज़ अचे पियो। तमामु ॾखिण में हवाऊं थधियूं ठहियूं, फर्स्ट क्लास थी वञनि सखर ताईं।
0: हा, रोहिड़ी सखर जा कहिड़ा हाल आहिनि?
1: रोहिड़ी सखर बिल्कुलु ख़ुशि पियो लॻे। सिंधु दरिया किनारे करी करी वेंदा आहियूं, तमामु मज़ो ईंदो आहे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
1: रहमत अली ऐं शौकत अली जखाने सां।
0: जी जी,
1: इरफान थेबो आहे, क़ुर्बान इंसाफ़ खेली आहे।
0: वालेकुम अस्सलाम। किरोड़े कुर जी ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़, प्यार ऐं पंहिंजाए मुरकूं लुड़क ऐं टहक। भला ॿिनि मिंटनि जो अव्हां खे गानो ॿुधाए ब्रेक वठां? मां कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं भला। चलो हिकिड़ी कॉल अटेंड कयूं था, हुन खां पोइ कमर्शियल ब्रेक दौरान प्लीज प्लीज कॉल न कजो, वरी जॾहिं वेलकम चवां तॾहिं कॉल कजो। काफ़ी महिरबानी, ब्रेक दौरान कॉल कंदा आहिनि, शिकायत कंदा आहिनि त कॉल खणी नथो। भला ब्रेक में खणंदसि त कहिड़ो फ़ाइदो? चलो ॾिसी था वठूं त कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम यूनस भाउ, कुंदरी खां चोवन कुमार कोली पियो ॻाल्हायां।
0: छा हाल आहे चोवन कुमार साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला। मूंखे ब्रेक वठिणो, चोवन तकिड़ा दोस्तनि जा नाला वठी सघो था?
2: हा, बसि प्रोग्राम ॿुधूं पिया, ऐं असांजे दोस्त हिन पासे थर जी

0: गुलाब गुल भील बुद्धि के दिलीप मेघवार है रुस्तम पवार के जोन पवार को लीजिए तरफा सलाम
1: वाले
0: ब्रेक
1: थैंक यू खुशी जो आबाद हो जो। ओके जनाब ट्रैक है मास्टर मंजूर आवाज है मुझे कबर से लिखी छो यार वफा न कई इन ट्रैक के बुधना बुधना ब्रेक था वी अटू कमर्शियल ब्रेक का बिना ब्रेक यूनिस बकारी कद हों सा आवाज साथ असा गड रहो अद कलाक जो बाकी साथ।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे खुश और बीरोनो की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमे आहिन चार अंजू खूबियों आई कोच एक ऐसे फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चार अंजू खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उनसा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खुशखबरी खुशखबरी अवाजी पहेंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन आई मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड आई MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
5: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे 4 बजे दिन फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओं खड़ी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086313।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ॿुधायो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क असां मुखातिब आहे अमा बुधो पिया पंहिंजो शो सिंधड़ी जी शाम ऐं उहा आहे अवां जे नाउ हलंदासीं कॉल जी तरफ़ ॾिसंदासीं त असांखे कॉल ते केरु जॉइन करे थो हलो अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां तमामु घणी मोहबतूं नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहब खुश आयो ठीकु कयो चङा भला मतारा जोड़ शुक्र अलहमदुल्ला अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे तमामु घणी मोहबतूं मिठा माण्हू थैंक यू भलीकार चवंदा जी जनाब सिंधड़ी शाम अवां जे नाम यूनिस बकारियो सलाम नंबर आहे 0334352578 ॿुड़ी 3024525786 ते कॉल ॾिसंदासीं कंहिंजी आहे हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आवाज़ अचे पियो जी केरु साहब ऐं किथां खां हलो केर साहब ऐं किथां खां आवाज़ अचे पियो छा हाल आहे चांडिया साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अवां सां गॾु बि केरु ॿुधे पियो जी जी
1: असांखे अंबर में कलाम ॿुधाए महिरबानी
0: कोशिश कंदासीं इनशाला तव्हां पंहिंजे दोस्तनि जा नाला वठी वठो जी जी तमामु घणियूं मोहबतूं साईं तव्हां सभिनी जूं महिरबानी लखत वारा केरु हूंदो जेको असां सां कॉल ते शामिल थींदो हुन जे लाइ बिल्कुल कॉल अची रही आहे मुसलसल कॉल्स जो तइदाद वधी रहियो आहे ॾिसंदासीं त हाणे केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला अवां केरु साहब ऐं किथां खां रामचंद कुमार कोहली साहब नोटो थरपारकर खां ख़ुशि आयो ठीकु आहियो जी जी शुक्र आहे अवी सदाई सुखिया हुजो इहा दुआ आहे अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे तमामु घणियूं मोहबतूं महिरबानी किरोड़े कुर्ब जी मज़े सामीन वक़्तु कीअं पियो गुज़िरे ख़बर पवे कोन थी छो त अव्हां सां गॾु हूंदासीं किथे वक़्त जी ख़बर पवंदी हलूं था काल जे तरफ़ ॾिसूं था काल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम साईं केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे अयाज़ अली भुट्टो साहब अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि अव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे जी जी जी जी जी जी जी
2: मुंहिंजे तरफ़ां जा जेका पूरी जेका टीम आहे सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम
0: महिरबानी सर थैंक यू थैंक यू

0: जी हलड़ी किस्मत मुखे केदो सतायो
1: केदो सिकायो थई यार चिनुई मुख प्यार
0: काल ते केरा दिसि दाटु हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम गोट बाबू वेरो सरपार कर कान दिलीप कुमार बेगवाड़
0: चाहला साईं जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह वहां सगद बे केर बे बुदे
2: जी गुरबान अली खान के लिए रुस्तम अली पावर प्यार ली लुंड मोमन चाले लगारी रामचंद मकोण आई प्यारो दोस्त आई मलक मोमन बलोच प्या जेके बदन बे सबनी जे सलाम से कंदर संभाग साईं
0: मेहरबानी मेहरबानी वालेकुम अस्सलाम केरो

0: किस्मत के मयार हूँ डिबियूं हूँ गालियूं कबियूं पर कालून ते गालियूं कबियूं केर हूँ तो काल ते उन जिले लिए ॾिसूं था केर आहे असां हलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: केर साहब ऐं किथां खां
1: गुलाम रे बलोच जुर्बी खां आयो साईं
0: छा हाल आहे मिठा माण्हू अलहमदुल्ला अवां जूं दुआऊं आहिनि अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे बस ॿ ॼणा ॿुधनि वाह वाह ॾाहो ॿार आहे थोरा नाला वठण लाइ

0: when you say. Thank you. Okay, किस्मत के मयारूं पर कॉल है पेंजन पेंजन में केर शामिल हूं दो उन जिले कॉल के आन करे तेरे सों हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब है किता का
1: काचे गुलाम हर चांडे को मन सिर चांडे को गुलाम
0: चाला चांडे साहब खुश आयो ठीक आयो اللہ پاک جے کرونے کر میں نواں سگ بھی کیر پہ اودے جے کی ودن تا سبن کی تاں دے سلام پہنچی ویا کرونے کر پہ اواں کال کئی محبت انسان قرب سائیں مہر نالا کھنی بیٹھو
1: ہاں مجھے بھاوا سب خان کیا دیو میں سوٹ رہنے کدا سن کیا دیو مرم خان کیا دیو مزور پاس کیا دیو بابا کیا دیو
0: सभिनी जूं महिरबानियूं तव्हां जा कुर्ब साईं ओके जनाब हलड़ी किस्मत मूंखे मारायो अथई काल ते ॾिसंदासीं केरु आहे असां सां गॾु हलो अस्सलाम वालेकुम साईं केर साहब ऐं किथां खां वाह वाह वाह
2: महबूब के
0: जी जी
2: गुलाम नबी एक जान चापर घर सजो घोरे ओरे इन पूजन साण कठे वजा
0: सुभान अल्लाह
2: मुझा साईं इमाम ॾिनो भमरो क्या
0: साले पट खां इमाम ॾिनो भमरो साहब भलीकार अलहमदुल्ला सॼी सिंध में असांजे जी एफ एम एटी एट जी सॼी टीम ख़ुशि आहे लाड़काणू सखर मेरापुर मोर इनशाला इनशाला अवां सां गॾु दोस्त आहिनि शामिल साईं असीं उन्हनि गुलड़नि जा खादिम आहियूं असीं उन्हनि जा उहे भंवरा आहियूं जेके गुलड़नि जे ख़ुशबूअ जे इंतज़ार में पूरी हवाउनि में रुलूं था आवाज़ डंगर में
2: बैकग्राउंड में कलाम आयो मस्त मिलियो गुलड़नि जी सरहाण में तूं जो बन जी लालाण में तूं ओ हिकिड़ो भेरो पस मिलियो पक मिलियो गुलड़नि जी सरहाण में तूं
0: महिरबानी विठा माण्हू महिरबानी लख तौर
2: जेके दोस्त ॿुधंदा पूरी संस जिते जिते तव्हांजो आवाज़ ॾखण उतर सभिनी दोस्तनि खे प्रिय प्यारनि खे इलाही सारा सलाह इमाम बिनो कमरो जी तरफ़ां
0: वालेकुम असलाम कुर्ब साईं कुर्ब महिरबानी इमाम बिनो कमरो साहब

0: बाह लगे बिछोड़ा,
1: बाह लगे बिछोड़ा, मार पवे बिछोड़ा कहर के दा।
0: 12 मिंटन जे बाकी साथ में असन जो साथ भी हुंदो उनका पोए साईं मुझे कॉल ते दिसना सी केर आहे असन सा गड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज अचे पियो साईं? हेलो। अच्छा जी, शायद कॉल करण वारे वट नेटवर्क जी

0: जी फरदाना परवीन जी आवाज में ही ट्रैक बुधुं पिया ॾिसूं था कॉल ते केरु आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम सर्कल वाले प्यारे ज़ोर खैर
0: शुक्र अलहमदुलिल्लाह केरु साहब ऐं किथां खां
1: सखी शाह दीवाने जे बारे में ॻोठ ख़बर बील खां रामचंद उदासी
0: रामचंद उदासी साहब खुश आयो
1: अलॻि
0: अलहमदुल्ला असां केरु बि ॿुधे

0: बाबा भोरो बुद्धे थो साई ने साधावा साई देव से जमाने बुद्धे थो
1: जी जी
0: अकेले बुद्धे थो
1: जी जी
0: आई
1: जल्दी नाला वटी बैठो जल्दी नाला वटी बैठो जल्दी नाला वटी बैठो। अच्छा मागी कॉल में आवाज ही हले वियो है शायद नेटवर्क FM 88 रेडियो नेटवर्क के मेर प्रखास सखर लाड़काने मोरे मेरापुर सकरंट मातली ऐ मटियारी जे गडेल आवाज खे वा कनायो पिया शो जो नालो है सिंधड़ी जी शाम आई अमा जो आरजी अमा सम खाते वा यूनिस बकारी काल ते केर हुंदो दिसू था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी केर साहब हैं किथा का
2: साजिद वाला चितर बोलको
1: चाला चांडू साहब खुश आयो
2: केर रहमान
1: हां हमार सकर भी केर पे बुदे मीठा मानो
2: जी मैं भा आज चांडू है मंजू चांडू बियो नजर हुसैन चांडू है मैं प्री प्यारो भा बाबर हुसैन चांडू
1: सबनी मिठन मानन के भलीकार।
2: थैंक यू सर।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मेहरबान कदरदान गालियों कंदे कंदे वक्त गुजर है बाकी असान वक्त घणो बचो ताके बुधाई वटा वक्त तमाम थोरडो बचो टोटल 89 मिनट बचे हैं इसुदा काल ते केर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम केर साहब है किथा का
2: असद खान जाने तो गला की सर जबल खान
1: केर सर जबल खान असद खान चांडियो वेलकम चंदा सी वहां से कर भी केर पे बुदे सबनी जो मेहरबानी हूं ता सबनी भाईरन दोस्तन जो मेहरबानी लख तो रहा अल्हम्दुलिल्लाह
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: सबनी जो मेहरबानी साईं मेहरबानी।

0: because he has Sumra Java, he's going to jail. Kal te ke rahe nishida utho halo assalamu alaikum keer sahab hai kitha ka mithi tharpar kar kha malik mohammad baloch sahab ke welcome tha chau
1: sai meherbani tawan jo hai sai tawan je doston ka puchhanda ayo tawan khush ayo te e dikhe kutla ka tawan jo program na to hai inde me assi tamam gana khush
0: मां थोराए तो या तवा जो यकीनन मुझे ला खुशी जड़ी गाल है त जेकरे मुझे करे मुझे कोशिश से करे या मुझे नेटवर्क की पेशकश से करे मुझे इन इदारे जे करे के खुशी मिले थी त जीएफएम 88
1: तवा के खबर आते न नौसा नौसी जे दौर में केडा मान के टेंशन परेशानी
0: बिल्कुल
1: जदे तवा के ई बकला के पुछंदा आयो त सब कुछ विचारे
0: साईं असा जे जको जीएफएम 88 नेटवर्क कहे उन जी कोशिश भी है ये त अस पने बुधंदड़न जे हर दुख सुख जा धणी हो जो भली दोस्तन के नाला वी वो
1: दिलीप कुमार है रामचंद मकवाणो है रोस्तम पवर है साई मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो है नाज नकर खान जमाली प्यार
0: वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम किरोड़े कुर्ब साई किरोड़े कुर्ब जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो भाईरो जी एफ एम मेर प्रकाश जी एफ एम मातली जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम मोरो जी एफ एम सकरंड जी एफ एम लाड़कानो जी एफ एम सखर जो कदल आवाज गाल ते दिसनासी केर आहे अस सगर हेलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कॉल ड्रॉप थी वही आहे जी जनाब एक दफा बेहर कॉल जुड़ी चुकी है केर हों असा वो हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केर साई
2: पठान खान पटके वालो सर कश्मोर का
0: साई मिठा मानू पठान खान पटके वारा साई भली कर
2: मेहरबानी मोहब्बतों तेरा अल्लाह ता के शादाबाद रखे तो जो प्रोग्राम है लश पशु हों साई
0: हां प्रोग्राम लश पशु हों मां ता जो थोराए तो आया बस पठान खान पटके वारे के वणी व्यासी ते जग जहान के वणी विंदा से
2: बिल्कुल हर लिसनर के दिल में जायो है साईं बिल्कुल
0: ड्यूटी
2: मानु छो जो हर मानु सा लिसनर सो मोहब्बत कदा
0: हां साईं बस ये असा जी ड्यूटी है असी मोहब्बत उन वारा बोल बोलिंदासी तदे त असा के जिए में जायो मिलंदियो
2: बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ता के हर पल सही काम में आपका दो महबूब सुभान
0: आमीन आमीन सुम आमीन दोस्तन ने नाला खण दो वालेकुम असलाम किरोड़े कुर्ब मिठा माणू किरोड़े कुर्ब साईं पठान खान पटके वारे साहब जी मोहब्बत वारी कॉल लगी वही वाह वाह दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो भारो बाकी पंजन मिनट जो साथ हो तो जैसी जीअर आयो अस गए नाले आयो पर आवाज सफर में असा साथ पंजन मिनट जो बाकी बचो कॉल अटेंड कर वूं केर है हलो अस्सलाम वालेकुम
3: सर वालेकुम सलाम
0: साईं केर साहब किथा का
3: किथर जवला का मंजूर चांडियो
0: मंजूर चांडियो साहब अवां सां गॾु केर पियो ॿुधे
3: मुझा भाईर साधु चांडियो बाबर चांडियो असद चांडियो
0: जी जी
3: आजिक चांडियो नजर हुसैन चांडियो
0: जी जी
3: सही बस ये
0: तमाम घणी मेहरबानी लख थोरा मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब तव्हांजा

0: ऐसा नसीत कॉल के ऐसा अगर के रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। सबनास कितन का केड़े शहर का वायण बस्ती का। हेलो अच्छा नथा बुधाए सको ना मालूम आगे खम बुधायो। ओके छा बुधाइन चाहिदो छा था चवण चाहयो। जी तमाम गडी मेहरबानी हूं लख थोर आला साई तवा के खुश रखे। मुझी लॉटरी खुली है। हाँ हाँ बिल्कुल खुली है बिल्कुल लॉटरी खुली है। मेहरबानी थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह करे खुश हो जो आबाद हो जो। थैंक यू मेहरबानी। जी जनाब आखिरी लम्हात में केर हों असा कॉल ते गद तो नंबर नोट कर 0334 3535 2578 6। अच्छा यो नंबर वक्त पुजानी ते पहुंचना रो हां जी यूनुस बकारी वणो रो आखरी कालू अटेंड ता कयूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कीर साहब ई किथा का
1: सजन खान की जा गुलाब मिट्टी सत पार कर।
0: जी छा हाल है गुलाब गुल।
1: बिल्कुल ठीक है ताम रहयो
0: अल्हम्दुलिल्लाह। वहां जी दुआ लगी पे केर पे उदे ता सगद अच्छा। थैंक यू वालेकुम सलाम कुर्ब साईं। ओके जनाब आखिरी लम्हात आहिनि मां तकिड़ो तकिड़ो ॿुधाए वठां वांखे बाक़ी ॿिनि मिंटनि जो सा आख़िरी गानो प्ले थियण वारो आहे। ट्रैक कहिड़ो हूंदो उहो मूंखे ख़बर कोन्हे पर प्ले थींदो। कॉल अटेंड करे था वठूं उन दौरान ॾिसंदासीं ट्रैक कहिड़ो थो हले। पहिरीं हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी केर साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
1: मुंहिंजो बाबा मोहम्मद अमीन कलोड़ो मुंहिंजो दोस्त अनिसार कलोड़ो अॼु तव्हां जीअं पंजे खां माना जेको असां न किरियात माना हले पई

0: के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं तो दोबारा नमोजार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो उसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जरूरत नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूंगा कि आप अपनी रोज के मालूम हूं क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी। ये पूरी कौम इस बात से आगा है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप होश के नाम लें, इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरनों को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वजीर आजम शहबाज शरीफ जी पीटीआई के गालन लाए मशरूत आज लॉन्ग मार्च ए धरनों खत्म करने जो शर्त रखी छो। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कदे वजीर आजम चो तो धरने ए लॉन्ग मार्च वाली सियासत जो पेरो निशानो मैशत हूँ है। हुकूमत नेक नियति से पीटीआई से गाल क्यों मुआशी फीते के बीहर रोकण मुल्क दुश्मनी ना है। पीटीआई वारा होश का कम वन लॉन्ग मार्च खत्म कन तो बीहर गाल अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई अपोजिशन टीम के गालन वाली हुकूमती आछ जो मुस्बत जवाब देने की हिदायत करे छी। बानी से मुलाकात गालन की बहाली लाए पेरों शर्त करार। बैरिस्टर गोहर चया है असा को भी मुतालबो गैर आइनी न हो, गालन के भी लॉन्ग मार्च से मशरूत न कर वे। चैन टुटन न घुर्ज वेहण से हल निकर। असद कैसर चो तो संगीन खदशन बावजूद हुकूमत से गाल तैयार आयु, पाकिस्तान खातर सियासी जमायतन के गाल करनी पवंदूं।

0: देखो रियासत बिल्कुल माँ होती है, लेकिन रियासत को बाप का रोल भी करना पड़ता है। बिगड़े बिगड़े बच्चे और ऐसे लोग जो माँ के प्यार से या माँ की इज्जत से खेल रहे हों, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो माँ को, तो वो फिर बाप का जो एक रोल है वो भी करेंगे। और इस रोल को पहले भी किया है, कहाँ होती है जो जब चलती थी तो सारी रियासत जो थी वो एक कांप रही होती थी, सारा निजाम रुका होता था। कहाँ है आज रियासत का फैसला है, और उस फैसले के बाद है कोई, ये रियासत का फैसला है, वो TLP हो, वो PTI हो, वो कोई और जमात हो, नो नॉनसेंस।
1: रियासत बिल्कुल माउ आहे, कॾहिं कॾहिं रियासत खे पीउ जो किरदार बि अदा करणो पवंदो आहे। मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणु आहे त ॿुधायो त किथे आहे TLP, जेका हलंदी हुई त समूरो निज़ाम रुकजी वेंदो हो, हाणे किथे आहे? रियासत जो फ़ैसिलो आहे त TLP हुजे या का बि जमात, कंहिंखे बि बेवकूफ़ी करण न ॾिनी वेंदी। KP बाबति आइनी मामलनि ते मुशावरत थी रही आहे। पंजाब हुकूमत बि सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो, 10 ॾींहनि लाइ जलसनि जलूसनि ऐं इज्तमाउनि ते पाबंदी हूंदी।
2: इमरजेंसी के बगैर लगाए बगैर मामला हल हों, लेकिन अगर टेररिज्म जो दहशतगर्दी जिस तरीके से इस मुल्क में है उसको कंट्रोल करने के लिए आईनी जो भी तरीके का हुआ उसको फिर अख्तियार करना पड़ेगा।
1: दहशतगर्दी के कंट्रोल करने लायक को हल आए

0: थियणु घुर्जे। इमरजेंसी लॻाइण बिना मसला हल थी सघनि था त थियणु घुर्जनि। बान सईदाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो चवणो हो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत ऐं अपोज़ीशन विच में ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ वॾी कोशिश कई। हुकूमत ऐं अपोज़ीशन विच में ॻाल्हियूं नाकाम छो थियूं सभिनी खे ख़बर आहे। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात आहे, ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
9: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
10: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
11: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो। غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹرانی اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج بار جو نہ تھن بانج پن
10: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے چوبیس کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود ہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 310-31-43-842 امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
10: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
10: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
12: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے کے ڈیں مریضن جو مفت علاج کندی
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 247-3241-230
12: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
13: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
12: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
13: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
12: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
13: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
12: 0333-252-5786
13: जी हा 231-25-25-786
12: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
13: सिंध जो आवाज़।

मिली वञ यार तूं हाणे हयाती थोरी आहे। मिली वञ यार तूं हाणे हयाती थोरी आहे, तोला ही रूह तो ताणे हयाती थोरी आहे। पुछा तुंहिंजी कयम हर हर पतो पइजी सघियो न आहे। पुछा तुंहिंजी कयम हर हर पतो पइजी सघियो न आहे, अलाह तोखे कॾहिं आणे हयाती थोरी आहे। लॻी थो साण नी अहिड़ो वियो या यार सभु विसरी, लॻो थो साण नी अहिड़ो विया ॿिया यार सभु विसरी, आयां दर्दनि में पिरी कहाणी हयाती थोरी आहे। मिली वञ यार तूं हाणे हयाती थोरी आहे, तोला ई रूह थो ताणे हयाती थोरी आहे। अस्सलामु अलैकुम, जी एफ एम मातली 90.4 जी लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रस रियान साण करे अवांजो पंहिंजो आर छे मोहम्मद खान महेरी। फनीशा करी साथी स्टूडियो इंजीनियर शाह नवाज ख़ासि कली ऐं प्रोग्राम जे लाइ स्पेशल हिदायतूं आहिनि स्टेशन मैनेजर सर यूनुस वकारी साहब जूं। छा अक्टूबर जे रस रिहाण में जेकॾहिं तव्हां बि शामिल थियण चाहियो था, बिल्कुल शामिल थी सघो था। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा एम टी, थोरी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 881 ते असांखे सेंड करे ॾींदा। जी अव्हांजा ख़ूबसूरत नाला असां ताईं पहुचंदा, प्रोग्राम रस रिहाण में शामिल थी वेंदा। समीन तव्हां जा कहिड़ा हाल आहिनि? उमेद था कयूं तव्हां ख़ुशि हूंदा, ठीक ठाक हूंदा पंहिंजनि प्यारनि सां। तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे जी एफ एम मातली 90.4, जिथे जिथे जंहिंजे माॻु इहो असांजो मुसाफ़िर आवाज़ उॾाम करे रहियो आहे। उन्हनि मेड़नी मानाइतनि महिरबानी खे हिकु भेरो ॿीहर भली कार चवंदासीं।

मुलसमीन जे जडे मौसम बदली आए उत्तर जूं हवाऊं जी संदेश पोता आहिनि या उत्तर जे हवाउनि जा संदेश पोता आहिनि सर निसरिया आहिनि जी भिटाई साईं चयो त सर निसरिया पांद उत्तर लॻाओ पिरी मूं तो कारण कांद संस सुखाऊं कयूं जॾहिं लाड़ में लाबारा पिया आहिनि ऐं कूंज नची लाड़ जा पट वसाया आहिनि त उहे विछड़ी वियल उन्हनि जी यादि मायूसनि जी उंदाई में पाण खे विञाइण लॻी आहे उन परदेसियुनि खे हिन सिट सां हर माण्हू पुकारण लॻो आहे त सर लोहेड़ा गभिया कुसर निसरिया तो की विसरिया ढोलिया ॾींहं अचण जा पर अलाए छो इहे सिट बि उदास उदास रहिजी वेंदी आहे अचण वारा त कोन ईंदा आहिनि पर उन्हनि जूं सोचूं उन्हनि जा ख़्याल पाछो ॾे जीअं पीछो कंदा रहंदा आहिनि पोयां छो रस्तनि ते रोला क्यूं कंदड़ हे नेण ख़्यालनि जी दुनिया में दरबदर थी रहंदा आहिनि

छनू सो न चांदी ऐं पारस बि छुअंदो मगर तूं न हूंदी कुझु बि न हूंदो। संभारींदियूं तोखे सितारनि जूं छाऊं करे चंड चो ॾिस चांडो की बीहंदो। मुझे शौक़ जो को पतो न आहे तोखे अङण तुंहिंजे ईंदे ख़बर छा थी वेंदो। ॾिसी तोखे जॾहिं मुंहिंजा नेण ठरंदा वेंदा दर्द घटिजी लही भार पवंदो। मिठा पंहिंजे नियाज़ पिताबी सां मिलंदे मोहबत जो हासिल पोइ महाराज थींदो। भलीकार चवंदा सभिनी ख़ूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी सां हाणे हाणे जॉइन कयो अचूं कयो जी एफ एम मातली 90.4 खे। जेकॾहिं अवाम प्रोग्राम में शामिल थियण चाहियो था त असांखे हिकिड़ो मैसेज कंदा। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI, थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾींदा। जी बिल्कुलु, असांजा तमामु प्यारा स्टूडियो इछने आहिनि शानवाज़ ख़ासि करे सां जंहिंजो तावन, जंहिंजे ख़ूबसूरत तावन सां ई असांजो मुसाफ़िर आवाज़ तव्हांजे समातुनि खे छुई रहियो आहे। मुंहिंजा खोड़ सारा मैसेज अचनि पिया, हुनखे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। असांजा ख़ूबसूरत आर्चेन ग़ुलाम क़ादिर गिराणो साहब असांखे यादि कयो आहे, शहज़ाद अली गिराणो, शावेज़ अली गिराणो, शाह ज़ैन अली गिराणो साहब ऐं शाह ज़ैन अली, शहज़ान अली गिराणो ऐं शाह ज़ैन अली गिराणो लख थोरा तव्हांखे भलीकार चवंदासीं। रस ॾियण में मोहबतूं ग़ुलाम क़ादिर गिराणो साहब असांजे ख़ूबसूरत आवाज़ जा साथी आहिनि। हलंदासीं ख़ूबसूरत गीत जे तरफ़।

झुड़वी थर पार्कर का वफा गुलाम रही बलोच साहब देश सा खैर सा साईं जो मैसेज पहुंचे चुको तमाम बेहतरीन असो प्यारो प्यारो बुधंदड़ है तान को चिना वेलकम शो ला जवाब वफा वफा वफा वफा गुलाम रही बलोच जियो मोहम्मद खान खुश आयो जी बिल्कुल मलकानी शहर का गोठ है अहमद खान खोसो का इमाम बख्श खोसो अनवर खोसो से याद कर बशीराबाद मोरी का फैसल लमदानी साहब याद कर मोहब्बत हूँ मिठा मानू अस्सलाम वालेकुम कड़ा हाल है शो ला जवाब सोनवाराई का असके असगर अली आराई साहब याद कर राशिद अली आराई साहब कुर्बान अली मोहब्बत मिठा मानू ताके भलीकार मैसेज पोतला लिखल अस्सलाम वालेकुम मदाब को शहर गुलाब लगारी गोठा है बशाम बशाम खान रिंद कंहिंखे बि हुन कोन मञियो शायर गाज़ी खान रिंद जो मैसेज पहुतो आहे रिज़वान अली रिंद फैज़ान अली रिंद शहज़ाद अली रिंद साहब ऐं नंढड़ी कोन्हे ज़हरा आपशो सुन रहा हूं शो ला जवाब वॾी महिरबानी साईं तव्हां सुरैया खे ॿुधणु घुरियो गुड सोनू आराई खां असगर अली आराई ऐं राशिद अली आराई कुर्बान अली ऐं बशीराबाद मोरी खां फैसल अमदानी साहब जा प्यार पहुता वफ़ा गुलाम रहीम बलोच साहब तव्हांजे आवाज़ जो आशिक़ वफ़ा गुलाम रहीम बलोच खे

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतन के मखसूस बीमारियों हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 03135525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

मल्लिकार्जुन सभी खूबसूरत समात के जिन जिन मेहरबानी ज्वाइन किया तुझे हर्ष मोहम्मद खान मेहरी तुम मुखातब है जिते जिते जैसे माहन तीन मुसाफिर आवाज उडाम कर रो है नंढी महिरबानी खे भेर ॿीहर भलीकार चवंदासीं इन उमेद सां त हिकिड़ो मैसेज करे पंहिंजी मौजूदगी जो ज़रूरु अहसासु ॾियारींदा मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा आहियूं टी थोरी स्पेस ॾींदा पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज टेबल हेठि वन ते असांखे सेंड करे ॾींदा आर्चिन अमान ला शाह साहब आवाज़ नगर जा सुहिणा साथी असांखे यादि कनि पिया अब्दुल जब्बार शाह तव्हां सां गॾु अब्दुल सबूर शाह ऐं अब्दुल कुदुस शाह ऐं बेबी मुसवेरा शाह ऐं बेबी छवेरा शाह एंड लखा ॾिनो जूणे जो हाजी मोहम्मद हसन लुंड साहब ऐं शाह ॾिनो शाह साहब वॾी महिरबानी साईं तव्हां लिखियो आहे त सभिनी प्यारनि ॿुधंदड़नि खे सलाम वालेकुम सलाम पूरी टीम तव्हांजी मोहबतुनि जी थोराई थी आर जे अमान ला शाह साहब अब्दुल वहाब निज़ामानी साहब असांखे यादि कयो आहे लख थोरा साईं तव्हांजा बहितरीन शायर आहिनि गोट बख़्शर निज़ामानी खां तव्हां असांखे यादि कंदा आहियो लख थोरा यादि आहे त अब्दुल वहाब निज़ामानी सां असांजो महबूब ॿुधंदड़ असांजो महबूब शायर जेको हिन वक़्तु असांजे विच में न रहियो आहे मिस्किन मोहम्मद खान निज़ामानी गोट बख़्शो खान निज़ामानी जे पटनि तां असांखे पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारींदा हुआ रबानी ॾांहुं हलिया विया ऐं यकीन हुननि जूं यादूं हुननि जा अहसास अॼु बि असांजे अंदर में समायल आहिनि हिन माइक्रोफोन जे तवस सां असां हुन जे लाइ दुआगू आहियूं त अल्ला पाक खेसि जवार रहमत में आला मक़ाम अता फ़रमाए सॼी दुनिया फानी आहे दुनिया खे छॾिणो आहे मिस्किन मोहम्मद खान निज़ामानी साहब बहितरीन शायर हुआ ऐं उन सां गॾोगॾु बहितरीन इंसान बहितरीन बादशो समातन जा मालिक हुआ असांखे यादि कयो आहे वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच झुड़बी थरपारकर खां तव्हां लिखियो आहे दादा ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे ऐं वॾी महिरबानी प्यारा इहे तव्हांजा लख थोरा वट मिरन आराई खां असांखे यादि कयो आहे मोहम्मद अवेस आराई साहब एंड मूसा खान आराई एंड तव्हां सां गॾु आहे नंढड़ो नूर नबी आराई प्रोग्राम वेरी गुड आहे मोहबतूं वट अब्दुल्ला टालपुर खां असांखे यादि कयो आहे मुरीद टालपुर साहब तव्हां लिखियो मोहम्मद खान मेरी प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे मोहबतूं

घणे बंगले खां रिज़वान कोसो बि यादि करे चुको, वॾी महिरबानी रिज़वान। तव्हांजो मोहबतूं आहिनि जो तव्हां असांजे मोहबतनि में यादि कंदा आहियो। मिठा माण्हू लख थोरा ऐं तव्हांजा खोड़ सारा मैसेज अचनि पिया।

अज पुनकड़ियन सजन पंहिंजा सारिया गलन तां गोड़न चूं बूंदूं बस न कन सिंधी सिक पिरियन लोक ॾिठे न लहे बलिकार चवंदासीं सभिनी खूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी सां हाणे हाणे जॉइन कयो ट्यून कयो आहे जीएफएम मातली 90.4 खे दोस्तो जेकॾहिं तव्हां प्रोग्राम में शामिल थियण चाहियो था ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियण चाहियो था त हिकिड़ो मैसेज कंदा ऐं मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदा हलूं त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI थोरी स्पेस ॾींदा पंहिंजो नालो गोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾींदा जीअं ई अव्हां जा सुहिणा सुहिणा नाला पहुचंदा असां प्रोग्राम में कंदासीं शामिल प्रोग्राम आहे रस रिहान वफ़ा गुलाम रहीम बलोच साहब झुड़बी थरपारकर खां असांखे यादि कंदा आहिनि मोहबतूं अंसारी शुगर मिल्क मोहम्मद अली मल्ला साहब जो इलाही ॾींहनि खां पोइ मैसेज आयो आहे अनवर मल्ला तव्हां लिखियो आहे त असांखे यादि करियो आहे साईं बिल्कुलु तव्हांखे यादि करे चुकासीं मातली खां ख़ालिद नोतकानी साहब जा प्यार पहुता आहिनि ख़ालिद वॾी महिरबानी तव्हां यादि कयो असांखे अब्दुला टालपुर जो ॻोठु आहे मुरी टालपुर ऐं तव्हां लिखियो मोहम्मद ख़ान मेरी शो इज बेस्ट प्लीज प्ले मिठो कची साईं बिल्कुल जेकॾहिं मिठू कची जो गीत असांखे मिली थो वञे त ज़रूरु प्ले कंदासीं लख थोरा मोहबतनि में यादि करण जे लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियणु, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियणु, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया? माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

सिक सा सूर सुणा सदमा तुंहिंजो पुछनि था। सिक सा सूर सुणा सदमा तुंहिंजो पुछनि था। वायूं ऐं गीत मुंहिंजा नगमा तुंहिंजो पुछनि था। यादन छॾियो वकोड़े सारना निंड फिटाई किथे वञी लिको आ उल्का तुंहिंजो पुछनि था। महबूब काल खां ई मिलियो न असांखे आहे उदास दिलड़ी जज़्बा तुंहिंजो पुछनि था। दिलदार देर एॾी कहिड़े सबब लॻाई महफ़िल मती में मूंखां सारा तुंहिंजो पुछनि था। ख़ुशबू घटीअ में कोन्हे सुनसान शहर सारो वीरान रोड रस्ता चारा तुंहिंजो पुछनि था। तोखे छॾियो समाए नेणनि में यार पंहिंजे ईंदी आ निंड नकवी सपना तुंहिंजो पुछनि था। भलीकार चवंदा सभिनी ख़ूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी सां हाणे हाणे जॉइन कयो आहे ट्यून कयो आहे GFM मातली 90.4 खे। प्रोग्राम आहे रस रियाण ऐं रस रियाण में अॼु आऊं तव्हां सां मुखातिब तव्हांजो पंहिंजो आरजे मुहम्मद खान मेहरी। समीन जी कॾहिं अवां बि आवाज़ सफ़र में शामिल थियणु चाहियो था प्रोग्राम रस रियाण में त हिकिड़ो मैसेज कंदा। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI, थोरी स्पेस ॾींदा पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾियो। गोट खमू जूणे जो में असांखे ॿुधंदा आहिनि लखा ॾिनो जूणे जो, वॾी महिरबानी तव्हां सलाम चयन आरजे अमानला शाह। बिल्कुलु अमानला शाह साहब ताईं तव्हांजा सलाम पहुची चुका, वॾी महिरबानी। लखा ॾिनो जूणे जो असांखे यादि कयो आहे। गोठ सोराब निज़ामाणी का मोहबती मंगण निज़ामाणी ऐं नंढड़ो अहसान निज़ामाणी बि यादि कनि पिया, वॾी महिरबानी तव्हां लिखियो था। उर्दू सॉन्ग हलाईंदा बिल्कुलु मोहबती मंगण, अॼु तव्हांजी पसंदि ते रूना लैला खे असां शामिल बज़्म रखियो आहे, ज़रूरु तव्हां ॿुधी सघंदा। अंसारी शुगर मिल्का मोहम्मद अली मला जो वरी मैसेज पहुतो आहे, लिखंदा ज़बरदस्त शो आहे मोहम्मद अली, वॾी महिरबानी तव्हांजी समातूं ज़बरदस्त आहिनि प्यारा।

वट झपियो पाड़ा खां असांखे मोहम्मद सिद्दीक पाड़ो रोशन अली पाड़ो ऐं निसार अहमद अबड़ो लिखनि पिया असलाम अलैकुम सलाम वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच खे वॾी महिरबानी वफ़ा असांखे ॿुधे पियो तव्हांजा प्यार तव्हांजूं मोहबतूं पहुची चुकियूं मातली खां ख़ालिद नुतकानी साहिब जो वरी मैसेज पहुतो आहे ख़ालिद वॾी महिरबानी तव्हां मोहबतुनि में यादि कयो आहे लख थोरा

क्योंकि जनाब गोट नूर मोहम्मद दर्स में असा बुधन था मुजतबा दर्स शान दर्स वाब दर्स मोहम्मद दर्स बेबी फजीला बेबी शाइना बेबी आमना नंढी असा बुधन्दून वही मेहरबानी तुम मौजूदगी जो एहसास दियारो अब्दुलरज़ाक दर्स साहब असा बुधे पे बीड़ो लंजवानी का गुल मोहम्मद कुंभार जो मैसेज पौतो है तवाजा लख थोड़ा गोट नूर मोहम्मद दर्स का हाजी अमन लंजार कामरान अली नवाज लंजार इमरान लंजार जो मैसेज पौतो है।

वफ़ा गुलाम रहीम बलोच साहब लखतोरा तव्हां लिखियो मोहम्मद खान प्लीज प्ले उर्स चांडियो मिसाल जे विछड़ी वञूं त ज़रूर प्ले कजो न वफ़ा मोहम्मद उर्स चांडियो त प्ले करे चुका आहियूं इनशाला ईंदड़ शो में हाज़िर बिल्कुलु प्ले कंदासीं मोहम्मद उर्स चांडियो खे असां अॼु प्ले करे चुका आहियूं।

इन्हीं में से तो तुम जरूर एक मैसेज कजो ए खबर पे तो अज अस मुसाफिर आवाज केस तई उडाम कर रो है। गुट सोराब खान निजामानी का मोहब्बती मंगल निजामानी साहब जो वरी मैसेज पहुतो है। नंढड़ो एहसान मंगल निजामानी तां लिखियो त रूना लैला बिल्कुल हाणे तां थोरी देर खां पोइ रूना लैला जो खूबसूरत आवाज़ ॿुधी सघंदा। वफ़ा गुलाम रहीम भलो जुड़ी भी थर पार कर का लिखनि पिया त हर हफ़्ते आसरा था ॾियो पर पिले न करियो मां दूर चांडियो खे न साईं बिल्कुल ही वफ़ा तव्हांजी बज़म आहे। मोहम्मद उर्स चांडियो खे असां प्ले कयो आहे ख़ूबसूरत हिकिड़ो गीत हो उहो प्ले कयोसीं। इनशाला इहो गीत जेको आहे ईंदड़ ते आउं ज़रूरु प्ले कंदुसि। धंधो कंदो आहे ग़ुलाम क़ादिर मल्ला जो मैसेज पहुतो आहे। शहबाज मल्ला ऐं शाहनवाज मल्ला मोहबतुनि में यादि कयो आहे वॾी महिरबानी। तव्हां शायदि पहिरियों भेरो प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। धंधो खां ग़ुलाम क़ादिर मल्ला ऐं शहबाज मल्ला शाहनवाज

सजन सांग जी जवान मां सा गुलाब गुल याद कयो है गुलाब गुल वडी मेहरबानी मिठी तरपार कर का प्रोग्राम बुधो पे जबरदस्त है वडी मेहरबानी गुलाब गुल

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेस, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

तुझको अबर की रेम छ में लिखू कभी कह दो तुझे मैं जान अपनी कभी तुझको मैं अपना महरम लिखू।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हाँ सर शुक्र मिल कहाँ संग मोहम्मद अली मल्ला जो मैसेज पोतो है अनवर मल्ला दान के लाजवाब शो काल दिनोत का हिसाब संग याद कयो है मातली का वफा गुलाम रहीम भलो झुड़ भी थर पार कर का लख थोरा ताके भली कार चवंदा सी प्रोग्राम में।

अॼु जो प्रोग्राम तव्हांखे कीअं लॻो? पंहिंजी राय खां तव्हां असांखे आगाह कयो, वरी बि आगाह कजो। वफ़ा गुलाम रहीम जुड़वी थर पारकर खां तव्हांजा प्यार पहुता, अंसारी शुगर मिल्स खां मोहम्मद अली बला, अनवर बलाल, लिखो लाजवाब शो मातली खां असांखे यादि कयो ख़ालिद नौतकानी साहब, वॾी महिरबानी। मुश्ताक अली लाशारी ऐं बाबू लाशारी साहब जामोट फार्म खां असांखे

जनाब दिल तो नीचे तजाज तो वे पर क्यों टाइम जो है वो कंखे भी ना मनी दो अस मजबूर इजाज़त वासी अब्दुल वहाब निज़ामानी साहब असा याद किया है गोठ बख्शो निज़ामानी का लख थोरा मोहब्बतों असूडियो इंजीनियर शाह नवाज खास कर साहब जो जिनकी मोहब्बत कावशन से ताई असो मुसाफिर आवाज पहुतो तो इन प्रोग्राम रस रिया जो समूरा सुरा रंगवान दोष में बिखरी चुका समय के करे जिंदगी की वफा साज सगे साथ इंशाला इंदड़ शो में वरी तासा मुखातिब तिंदासी तेस तई पांजे आरचे मोहम्मद खान मेहरी पनी सरकारी साथी स्टूडियो इंजीनियर शाहनवाज खास करे स्टेशन मैनेजर सर यूनुस बकारी साहब के वरी मिलन ताई इनी दुआ सा मुर्की दींदा मोकल तो शार सजमीन पाकिस्तान सिंध सूं साथ सलामत रहे तो खिली मोकलायूं दिलियूं गॾु।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sulfites Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: बदकिस्मती से ये धरनों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं वो दोबारा नमूदार हो रहे हैं.
7: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो उसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जुर्म नहीं होने देंगे. कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा इंशाल्लाह. हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको

0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-200।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
0: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजनि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252576।
8: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत आए सचाई, लबन ते मुर्का विखरिल दिलन में आ बेआई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ।

जीएफएम नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानतनि महबूब दोस्तनि प्रिय प्यारनि दिलरुबा शख़्सियतुनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदी।

उम्मीद और अब लगता है। खो गई सुबह की उम्मीद और अब लगता है हम नहीं होंगे कि जब होंगे उजाले मोहसिन। हाकिमे वक्त कहां, मैं कहां, अदल कहां। हाकिमे वक्त कहां, मैं कहां, अदल कहां, क्यों न खलकत की जुबां पर लगाएं ताले मोहसिन। हाकिमे वक्त कहां, मैं कहां, अदल कहां, क्यों न खलकत की जुबां पर लगाएं ताले मोहसिन। वो जो एक शख्स मताए दिलो जान था न रहा। वो जो एक शख्स मताए दिले दिलो जान था न रहा, अब भला कौन मेरे दर्द संभाले मोहसिन। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन।

अमा सबनी मानतन महबूब दोस्तन जनाओ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी खूबसूरत प्यारी आवाज में एक खूबसूरत ट्रैक अछूत गद जी ही गीत एंजॉय क्यों वरी वापस मरू था। बुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते रियाणी पद जो न थियण औरत।

0: सौ सतेताली बट्टी इकतालीस बसो टी।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रख, बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0360-95-244।
3: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13 ए 14 अक्टूबर बरोज अंगारे 4 बजे दी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ए दवाऊं मुफ्त में डिनी वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ए थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
3: खुशखबरी, खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख भिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।